0: बात मार ना मुस्तमान
1: हेलो
0: अनु मुस्तमान बात मार ना
1: हेलो
0: मुस्तमान अनु भाई तो